श्रीमन नित्य निकुंज विहारिणे नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामाजू श्री राधा रानी हैं। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है, तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल मिलेगा।

ब्रज यात्रा को विश्राम देते हुए श्री वृंदावनेश्वरी, श्री राशेश्वरी, श्री हरिदासेश्वरी राधारानी के चरणों का ध्यान करते हुए मस्ती में झूमते हुए उनके नाम का कीर्तन करिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सने बिहारी लाल की।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 7 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 8 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

ही पड़ा ये माना मेरी जान, मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान।

देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 9 AM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

उठ गई। आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 a.m. in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 noon in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलो, चाहे कली से प्यार करूं।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: चतुर एक पेर है ना, या घोड़ा बोला या चतुर बोला। गा
1: एक चतुर नार करके सिंगार,
2: एक चतुर नार बड़ी होशियार,
1: मेरे मन के द्वार ये घुसत जात,
2: अपने ही जाल में फंसत जात,
1: हम मरत जात, अरे आय आय आय आय आय आय। चतुर नार
2: बड़ी होशियार
1: करके सिंगार,
2: अपने ही जाल,
1: मेरे मन के द्वार
2: फंसत जात,
1: ये घुसत जात,
2: हम हंसत जात,
1: हम मरत जात, मरत जात, मरत जात।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 3 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: अरे तुम लोग हंस क्यों रहे हो?
1: हंस नहीं रहे दोस्त, रो रहे हैं तुम्हारी अकल पे और हम सबकी बेखूबी पर। एक दीवाने ने ख्वाब देखा जंगल में और उसकी तस्दीक के लिए हम सब दीवाने तुम्हारे दरबार में पहुंच गए।
0: ये दीवानगी नहीं, हकीकत है। मैंने अपनी आंखों से उन दो इंसानों को सांप बनते हुए देखा है। विजय, पहले तो तुम्हारी सिर्फ दिमाग पे शक था, अब मालूम होता है कि तुम्हारी आंखें भी जा रही हैं।
2: हम ये कैसे मान सकते हैं यार कि एक सांप जब चाहे इंसान का रूप धारण कर ले और जब जी में आए फिर से सांप बन जाए।
3: मैं तो कहता हूँ ये तुम्हारे दिमाग का फतूर है और कुछ नहीं।
1: मुझे तो सोचकर भी हंसी आती है यार।
0: चंद साल पहले तुम्हारे जैसे लोग चांद पर जाने वालों पर ऐसे ही हंसा करते थे।
4: ओ फिलोसोफर साहब, आप अपनी फिलॉसफी से सच को झूठ में नहीं बदल सकते।
0: अरे भाई, ये इच्छाधारी सांप सदियों से है और जो बात सदियों से सच है वो आज भी सच है, समझे?

0: गोली किसने चलाई?
1: मैंने।
0: क्यों?
1: अगर मैं गोली नहीं चलाता तो नाग उस लड़की को डस लेता।
0: वो लड़की नहीं है बेवकूफ, वो नागिन है, और जिस नाग पर तुमने गोली चलाई है उसे मैं इंसान के रूप में देख चुका हूँ, उससे बातें कर चुका हूँ।
2: लेकिन अब क्या करूँ, पिस्तौल से निकली हुई गोली वापस तो नहीं आ सकती?
0: जिस तरह पिस्तौल की गोली वापस नहीं आ सकती, इसी तरह नागिन का बदला कभी टल नहीं सकता। कहते हैं मरने वाले नाग की आंख में मारने वाले की तस्वीर रह जाती है, और नागिन उस वक्त तक चैन से नहीं बैठती जब तक वो खून का बदला न चुका ले।
3: तो अब क्या किया जाए?
0: किरण के बचने की सिर्फ एक ही सूरत है, हमें फौरन उस नाग को ढूंढ के जमीन में दबा देना चाहिए ताकि वो नागिन अपने नाग की आंख में इसकी तस्वीर न देख सके।
3: लेट्स सर्च।
0: हाँ चलो।

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार थीम चॉइस शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार ऑफ द वीक में सुनिए दिए गए स्टार मेहमान पर आधारित गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार की ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

हाय हेलो नमस्ते गुड इवनिंग सत श्री अकाल राधे राधे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन। आ चुका हूं लेकर आज का स्टार थीम चॉइस। और आज के स्टार थीम चॉइस के शब्द हैं, वह है हुस्न, रूप, जिया, अदा, पलकें, जुल्फें, चेहरा, आंखें, ख्वाब और सपना। तो इन शब्दों पे गाने प्ले होंगे, लेकिन सबसे पहले मेरे पसंद के गाने एंजॉय कीजिए और आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करने।

बिल्कुल। और सबसे पहले जुड़ने वाले हमारे सैफू भाई सरफराज जी साउथ अफ्रीका से जुड़ चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम भाई जान, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और उनके बाद जुड़ी हैं सुनीता गोपजी सरायकेला झारखंड से, एमडी फैज आलम जी भी जुड़े हुए हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और अभिषेक तिवारी जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। अभिषेक तिवारी जी सर्वेश भगत जी हैं, बहुत बहुत वेलकम है जंदहा वैशाली से। और साथ ही साथ हमारे असलम राणा जी जुड़ चुके हैं हापुर से। और अशोक देशमुख जी जुड़ चुके हैं निम्भोरा महाराष्ट्र से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। सरबजीत सेठी जी फाजिलका पंजाब से वेलकम है आपका भी। और आरिफ सिंधी जी गांधीनगर गुजरात से जुड़ चुके हैं। काजल झक्काज जी भी जुड़ चुके हैं सीतामढ़ी बिहार से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और बबीता देवी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। कुंता बेनी जी दिल्ली से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और मीना इब्राहिम जी यूएस से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। राधा कृष्ण गोप जी जुड़ चुके हैं, ये भी सायकला झारखंड से हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और मंगेश देशमुख जी जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र से, वेलकम है। और प्रमोद कुमार जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आगरा से। और जाकिर खान जी जुड़ चुके हैं जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से। और लिखती हैं यानी कि प्रियंका जी के गाना मैंने पहली बार सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अब आप ही सबके गाने को मैं प्ले करने वाला हूँ, क्योंकि सभी दोस्तों ने एक से बढ़कर एक गाने की डिमांड किया है। लेकिन सबसे पहला जो आज मैं डिमांड प्ले करने वाला हूँ, कहाँ से शुरू करूँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आज के सभी गाने बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। लेकिन जो सबसे पहला गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो हमारे ये सुनील कोंडे जी का है। वो किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है? जी हाँ, मेरी जहाँ पढ़ा है, नजर से पढ़ा है। एंजॉय कीजिए इस गाने को।

वेलकम बैक। और जब इस फिल्म से यानी कि शिल्पा शेट्टी जी की जब यानी फिल्म में एंट्री हुई थी, वह क्या गजब की लग रही थी। और इस गाने में तो कमाल की किताबें बहुत सी पढ़ी होगी, शायद आप लोगों ने देखा होगा, मैंने भी देखा है। एसके जायसवाल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और ग्रेटर नोएडा से है और यहाँ पे यानी प्रियंका जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है। और एमडी यानी कि परवेज आलम जी जुड़ चुके हैं, ये रफीगंज बिहार से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं भाई परवेज जी। मीना जी लिखते हैं वाह क्या गाना है, शानदार सॉन्ग के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। सुनील कुंडल जी लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद अमर सर जी गाना प्ले करने के लिए। राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब डिमांड है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड है। और हमारे ये धर्मेंद्र मोहन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। ओके जी, अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो हमारे नंदलाल यादव जी का है और सुनना चाहते हैं ये गाना, एंजॉय द ट्रैक।

नंदलाल यादव जी आज बनते हैं आज के सॉन्ग विनर, बहुत बहुत बधाई हो। आपका गाना सबसे अलग, सबसे अनोखा, सबसे यूनिक, हट के है। धन्यवाद इस गाने के लिए, थैंक यू सो मच। और पहली बार मैं भी सुन रहा हूँ इस गाने को।

0: बिल्कुल बहुत ही प्यारा गाना था, सच में दिल खुश कर दिया भाई। एंड कुंता जी लिखते हैं कि अमन जी ओपनिंग सॉन्ग भी शानदार और अश्विन कोंडे जी का भी गाना शानदार और ये भी डिमांड बहुत ही प्यारा है। थैंक यू सो मच सभी दोस्तों को। और हम हमारे प्रमोद कुमार लिखते हैं कि नंदलाल यादव जी की च्वाइस ऑसम, सच में बहुत प्यारा था यार ये फीडबैक।
1: अमन सर जी शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी। नंदलाल यादव जी अपने गाने में शामिल किए हैं, धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी, वेलकम है आपका भी। और हमारे राधा कृष्ण को देखते हैं बहुत ही खूबसूरत डिमांड के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मीना इब्राहिम जी लिखते हैं वाओ वाओ वाओ क्या बात है, बहुत ही प्यारा गाना है और मैंने पहली बार सुना है जी, मैंने भी पहली बार सुना है। एमडी फैज लिखते हैं कि जी एकदम लाजवाब डिमांड के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे ये चार दोस्तों का है, अशोक देशमुख जी, सर्वेश भगत जी, आत्माराम पाटिल जी और सैयद यूनु जी। पहले अशोक देशमुख जी।
2: नमस्कार अमन सर।
0: नमस्कार,
2: मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख
0: जी, वेलकम है आपका।
2: आज है स्टार थीम चॉइस, तो मुझे एक गीत सुनना है, फिल्म का नाम है सलामी और गाने का बोल है चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना।
0: जी जी,
2: ये गीत सबसे पहले मैं आपको और आपकी सुंदरता की मूर्त को और जितने भी हॉटस्टार सुनने वाले श्रोता है उन सबको ये गीत सुनवा दीजिए सर, धन्यवाद।
1: आरजे अमन सर जी शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी।
0: नमस्ते।
1: आज हमारा फरमाइश का फिल्म है सलामी और गाने का बोल है चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना। हॉट स्टार जो सबको दीवाना बनाते हैं, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटे को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत हजरतगंज दाहा जिला वैशाली बिहार से बोल रहे हैं। हमारा परिवार सतीश भगत, हेमंत भगत, वर्ष किशोर भगत, आनंद शेखर, सनी कुमार, मनी कुमारी, सूरज कुमार, मनोज जायसवाल, अशोक देशमुख जी, आत्माराम पाटिल जी, सैयद यूनुस जी, आर जे अमन सर जी, सुंदरता की मूर्त जी, आर जे वंशिका जी, आर जे आकांक्षा जी, आर जे रत्ना जी, आर जे एमएस परमार जी और सभी आर जे और सभी भाई और सभी बहन और सभी लिसनर इसमें शामिल है, सभी को सुनत जी। जयराम जी के अमन सर जी।
3: अस्सलाम वालेकुम आर जे अमन सर जी, मैं अष्टी जिला जाला महाराष्ट्र से सैयद यूनुस बात कर रहा हूँ सर जी। और आज है स्टार थीम चॉइस और मेरी आज की थीम है सर जी चेहरा। उसी मौके पर एक गीत लेकर आया था, फिल्म का नाम है सलामी, कुमार सानू और आशा भोसले की आवाज में सॉन्ग है सर, और सॉन्ग है चेहरा

0: खो होना। ये गीत की बोली सर जी। और इस गीत के साथ मेरे कुछ चंद दोस्तों की, सबसे पहले तो है आरजे अमन सर जी, आप और आपकी सुंदरता की मूर्त है सर जी। जी वेलकम वेलकम वेलकम सर। अशोक देशमुख जी, आत्माराम पाटिल जी, सर्वेश भगत जी और जितने भी रेडियो हॉट स्टार सुन रहे हैं स्टार थीम चॉइस, उन सबको ये सॉन्ग डेडिकेट है। ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार, जो दीवाना बना दे। थैंक यू आरजे अमन सर जी,
1: वेलकम जी, एंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल, इन चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर के देखो ना। और वैसे फीडबैक बहुत सारे हैं। अर्शद जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है अर्शद जी। और फिर कुमार क्या कहते हैं?
1: अमन भैया गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। और मैं भी जुड़ गया हूँ प्रोग्राम से। और ये नंदलाल यादव जी की बहुत ही यूनिक सी फरमाइश, उनको दिल से धन्यवाद है इतना अच्छा बेहतरीन गाना फरमाइश करने के लिए, धन्यवाद।
0: वेलकम है आपका भी। और जाकिर खान लिखते हैं कि ऑसम सॉन्ग के लिए थैंक यू सो मच। और संध्या पटेल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। लिखती है कि यानी कि कितने भी दूर रहो ये दोस्त पर हमेशा दिल के पास रहेंगे, तुम मेरी हर खुशी और हर एक सांस में मैं खास रहोगे। एंड गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग दीदी, वेलकम है आपका भी। और आरिफ सिंधी जी लिखते हैं कि ये चारों दोस्तों की मिली जुली डिमांड शानदार लगी है, थैंक यू सो मच। और ये क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
2: अजय अमन सर जी धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद, थैंक यू। हमारा चार भाई का फरमाइश, अशोक देशमुख जी, सैयद जुनूस जी, आत्माराम पाटिल जी और हम चारों का फरमाइश आप शामिल कर दिए, थैंक यू, धन्यवाद।
0: वेलकम जी आपका भी। और सुपर से भी ऊपर वाला गाना है, मजा आ गया इस गाने को सुनकर, सभी को दिल से शुक्रिया। और बबीता देवी जी जुड़ चुकी है, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। लिखते हैं कि मिली जुली ये फरमाइश अच्छी लगी है और थैंक यू सो मच डेडिकेट करने के लिए। अशोक देशमुख जी कहते हैं, क्या सुनते हैं?
3: धन्यवाद अमन सर, आपने हमारी फरमाइश का गीत सुनवाया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं
0: अच्छा निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख जी, अच्छा सुन लेते हैं।
3: निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख
0: जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और हमारे एमडी यानी परवेज आलम जी लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग है जी, थैंक यू सो मच। प्रियंका जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
4: हेलो,
0: हेलो,
4: गुड इवनिंग अमन सर।
0: गुड इवनिंग,
4: आज आपने बहुत ही सुंदर सॉन्ग सुनाया।
0: हाँ हाँ,
4: और उसकी दो लाइन मैं आपको सुनाना चाहती हूँ।
0: अच्छा अच्छा सुना दीजिए।

0: अब दूरियां ना रहे दरमियां,
1: क्या बात है,
0: किसने तुम्हें रोका है, शामो सहर देखो ना, शामो सहर देखो।
1: मुझे गाना याद आ रहा है, तुझको जी भर के मैं देखूं, मुझे हक है। और प्रमुख जी लिखते हैं कि सभी दोस्तों के डिमांड लाजवाब बेहतरीन चल रहे हैं। और यहाँ पे राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि इस शानदार डिमांड के लिए थैंक यू सो मच सभी दोस्तों का। कुंता बेनी लिखते हैं कि चारों दोस्तों की मिली जुली ये डिमांड जो थी बहुत ही प्यारी थी, थैंक यू सो मच सभी का। इसी बात पर अगले जो डिमांड है वो रश्मि जी का है, रश्मि जी सुनना चाहती है बहुत ही प्यारा गाना, एंजॉय द ट्रैक।
2: चांद भी देखा,
1: आहा,
2: फूल भी देखा,
1: क्या बात है,
2: बादल बिजली तितली जुगनू कोई नहीं है ऐसा, तेरा हुस्न है जैसा,
1: वाह
2: तेरा हुस्न है जैसा,
1: क्या बात है।
3: मेरी निगाह ने ये कैसा ख्वाब देखा है,
1: आहा,
3: जमीन पे चलता हुआ महताब देखा,
1: क्या बात है।

बहुत प्यारा गाना था, सच में दिल खुश हो गया। संध्या पटेल लिखते हैं वाओ सुपर सॉन्ग है जी बिल्कुल, और एमडी फ्रेज लिखते हैं जी जबरदस्त और प्यारा गाने के लिए थैंक यू रश्मि जी। और यहाँ पे साथ में हमारे यानी के प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब चॉइस है जी बिल्कुल। इसी बात पर अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ दत्ता करम जी का, और दत्ता करम जी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, ये चेहरा तेरा जब जब देखूं यानी प्यार आता है। एंजॉय द ट्रैक।

0: बिल्कुल लेन चेहरा जब जब देखूं और प्यार आए तुझ पे। और वैसे यहाँ पे फीडबैक भी आए हैं बहुत सारे। एमडी परवेज जी लिखते हैं अमन सर जी प्रोग्राम अच्छा चल रहा है, आज के थीम भी लाजवाब है जी, थैंक यू सो मच। और थैंक यू जाकिर मुलानी जी अच्छे थीम के लिए। और हमारे प्रमोद कुमार लिखते हैं कि दत्तक कदम जी की भी डिमांड है, ऑसम है, थैंक यू सो मच। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, मजा आ गया सुन के। और साथ ही साथ ये क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
1: जय अमर सर जी, दत्ता कदम जी अपने गाने में शामिल किए, धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके जी, वेलकम है आपका भी। और आफ्ताब आलम जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आफ्ताब आलम जी। ये झारखंड से हैं और ओके। और साथ ही साथ हमारे अनिल कश्यप जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी अनिल कश्यप जी। और साथ ही साथ राधा कृष्ण को देखते हैं कि बेहतरीन डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे एस के जायसवाल जी है का है और सुनना चाहते हैं, पल के उठा के देखिए, नजरें मिलाइए, धड़कन को भी खबर ना हो, यूं दिल में आई, आइए ना भाई, हम इंतजार कर रहे हैं। आई मिस यू सो मच।

और दिल ने तुझसे कोई हिसाब नहीं मांगा, के दिल ने कोई तुझसे हिसाब नहीं मांगा, और बस हर जन्म वो तेरा साथ मांगा। दौलत शोहरत सब यही रह जाएंगी, दौलत शोहरत सब यही रह जाएंगी, मैंने तो बस तेरा प्यार मांगा। फूल मांगू ना बाहर मांगू, मैं तो सनम तेरा प्यार मांगा।

बिल्कुल इन पल के उठा के देखिए, नजरें मिलाइए और धड़कन को भी खबर ना हो, यूं दिल में आइए क्योंकि आंखों के रास्ते ही दिल में उतरा जा सकता है, क्यों है ना। वैसे फिलहाल फीडबैक मेरे पास आए हुए हैं, रवि मोहाड़े जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी, और प्रमोद कुमार लिखते हैं वाओ सुपर चॉइस, थैंक यू फॉर दिस सॉन्ग, एंड अफ्ताब आलम जी लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत ये सॉन्ग सुनकर मजा आ गया, धन्यवाद देते हैं। और मीना कुमारी जी ने बहुत लंबा मैसेज लिखा है, ओ माय गॉड बहुत लंबा, लिखती हैं कि काश तुम होते तो शायद शिकायतें कम होती, लिखते हैं कि काश तुम होते तो शायद शिकायतें कम होती और मुस्कुराने की वजह ज्यादा होती, और काश तुम होते तो हर हार इतनी भारी ना लगती, हर रात इतनी लंबी ना होती, मैं अक्सर सोचती हूँ कि तुम होते तो ये होता वो होता, जिंदगी शायद कुछ और होती, और फिर ख्याल आता है कि शायद ये दिल की आदत है हर अधूरी चीज को तुम्हारे नाम नाम कर देने की, ये सच है कि ये जिंदगी तो अभी चल रही है और सांसें अभी भी आ जा रही हैं और सुबह भी और शाम भी होती है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारे होने के ख्वाब में जो दुनिया बसाई है वो कभी हकीकत नहीं बन पाई है, ओ माय गॉड बहुत अच्छा लिख दिया जी आपने, ओके जी। और यहाँ पे मीना जी लिखते हैं बहुत बहुत खूबसूरत गाना है, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग, एंड संध्या पटेल जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, और एम डी परवेज आलम लिखते हैं कि अरे भाई अगला गाना आप ही का आने वाला है, टेंशन काहे लेते हैं भाई। एस के जयसवाल जी लिखते हैं अमन जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरा गाना प्ले करने का, दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए, और आमिरा खान जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, वालेकुम असलाम, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी, और साथ ही साथ यहाँ एम डी फैज लिखते हैं कि एकदम खूबसूरत गाने के लिए धन्यवाद देते हैं इसके जसवाल जी को, और रवि मोहड़े लिखते हैं कि पलके उठा के देखिए, नजरें मिलाइए, धड़कन को भी खबर ना हो यूँ दिल में आइए, वाह लाजवाब गाना सुनने को मिला है। और कुंता जी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत डिमांड है, थैंक यू सो मच, इसी बात पर यानी परवेज आलम जी का सुनता हूँ ये गाना, आप सबको सुनाता भी हूँ, हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों को देखकर।

का मकसद में इनको घटा कहूँ तो घटाओ को क्या कहूँ भाई। वैसे गाना बहुत प्यारा है ना, और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन डिमांड के लिए, थैंक यू परवेज जी। अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, और अब इस कदर भी ना चाहो कि हम के दम निकल जाए, मस्त गाना है जी बिल्कुल। और रवि मोहन लिखते हैं कि हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों को देखकर, बहुत ही माइंड ब्लोइंग सॉन्ग है जी बिल्कुल। और सुनील कुमार जी लिखते हैं कि हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों को देखकर, ये गाना मुझे बहुत लाजवाब लगा है, धन्यवाद देते इस गाने के लिए। और कुंता मिले लिखते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल डिमांड, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। एंड यहाँ पे प्रियंका जी लिखते हैं कि बहुत ही नाइस सॉन्ग है जी, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे राधा कृष्ण गोप जी की इस डिमांड के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बात पर अगला डिमांड राधा कृष्ण गोप जी का ही है, सुनवाता हूँ। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी।

0: रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। एमडी फैच जी, वाओ, बहुत ही प्यारा डिमांड है। थैंक यू सो मच राधा कृष्ण गोप जी। और संध्या पटेल लिखते हैं कि वाओ, सुपर सुपर सुपर सॉन्ग, क्या ही कहने, क्या लाइन है इस गाने के। राधा कृष्ण गोप लिखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया मेरा गाना बजाने के लिए। और साथ ही साथ हमारे शेख मोहम्मद ताहिर जी लिखते हैं कि सामने हो मंजिल तो रास्ते न मुड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते न मुड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना, और हर कदम पे मिलेंगी सफलता आपको, हर कदम पर मिलेंगी सफलता आपको, बस सितारे छूने के लिए कभी जमीन मत छोड़ा। अच्छा, वैसे यहाँ पे इन प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन चॉइस है जी, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और मीना जी लिखते हैं वाह क्या बात है, बहुत ही प्यारी पसंद है, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे यानी कि प्रियंका जी लिखती हैं कि आज सभी की पसंद लाजवाब है जी, आपकी भी पसंद लाजवाब है, अभी आपका भी नंबर आने वाला है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और कुंता जी लिखते हैं कि दो रास्ते गाना सुपर हिट लगा है, धन्यवाद देते हैं। और रवि मॉडल लिखते हैं कि ये रेशमी जुल्फ है, ये शरबती आंखें, सुपर हिट लाजवाब गाना है। और ये क्या कहते हैं, सुनते हैं।
1: जो ये आंखें शर्म से झुक जाएगी, जो ये आंखें शर्म से झुक जाएगी, सारी बातें यहीं बस रुक जाएगी, चुप रहना ये अपसाना, कोई इनको ना बतलाना। अच्छा। कि इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी जी, लाजवाब सॉन्ग, दिल से धन्यवाद है फरमाइश करता को। मैं सुनील कुमार बांका बिहार से।
0: ओके जी, धन्यवाद आपका भी। और एमडी फैजी लिखते हैं वाओ, एकदम लाजवाब डिमांड के लिए, थैंक यू सो मच, मजा आ गया सुन के। साथ ही साथ शिल्पा बहन लिखते हैं कि ये रेशमी जुल्फे, बहुत ही बढ़िया गाना सुनने के। और शिल्पा बहन जी, आपका गाना रिजेक्ट हो चुका है क्योंकि वो गाना पहले ही यानी कि रश्मि जी ने प्ले करवा दिया है। आर्य सिंधी जी लिखते हैं कि अमन सर जी प्रोग्राम बहुत ही शानदार चल रहा है, थैंक यू सो मच, और बहुत ही प्यारे प्यारे गाने सुनने को मिल रहे हैं। और अनिल कश्यप क्या कहते हैं, सुनते हैं।
2: आरजे अमन सर जी नमस्कार, मैं अनिल कश्यप सिवान बिहार से, और कुल मिला के 21 दिन के बाद आपके शो से जुड़ा हूँ। और इसके पीछे रीजन मेरा मोबाइल था जो कि खराब हो गया था। अच्छा। अब नए फोन के साथ, नए एनर्जी के साथ जुड़ गया हूँ, और इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपके शो के प्रति मेरा दीवानापन है या बाकी भी लिसनर्स लोगों का जो दीवानापन है, ये दिल में बसा जाते हैं निशानी बनकर, जिन्हें हम रखना चाहते हैं अपनी आंखों में, क्यों निकल जाते हैं पानी बनकर।
0: ओह माय गॉड,
2: बहुत अच्छे अच्छे गाने चल रहे हैं, धन्यवाद सर जी।
0: इसी बात पर अगला जो डिमांड प्ले करने वाला हूँ वो जाकिर खान जी का है, एंजॉय द ट्रैक।

और हमें दो दोस्त दिखाई नहीं दे रहे हैं। ना ग्रुप में दिख रहे हैं, ना चैट बॉक्स में दिख रहे हैं, और ना ही उनके कोई डिमांड ही आ रही है। पता नहीं कहाँ गायब है। कोई बात नहीं, अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ, लेकिन फीडबैक भी आया हुआ है ना, मैं जरा उसको भी शामिल करता हूँ। हम सबके दिल जिगर जानू रविंद्र सानू जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका ताजपुर गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। और हमें संध्या पटेल जी लिखते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड वाला गाना भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं जाकिर जी का डिमांड ऑसम है। और मीना कुमारी जी लिखते हैं कि मोहब्बत में, ये लिखते हैं कि मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिस पर काफी पे दम निकले, और कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। जी बिल्कुल सही कहा आपने, मजबूरी में ही, मजबूरी का नाम है अमन बाबू, है ना। और अकबर खान जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम असलम, बहुत बहुत वेलकम है। और मीना जी लिखते हैं वाह बहुत खूबसूरत गाना है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मुबारक हुसैन जी जुड़ चुके हैं भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, आप जुड़ गए, वेलकम करते हैं आपका। और राधा कृष्ण को लिखते हैं बहुत ही शानदार डिमांड है, थैंक यू सो मच इसी बात पर। अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो कौन सा है? ओके, ये है आरिफ सिंधी जी का आंखों से तूने ये क्या कह दिया। एंजॉय कीजिए। आरिफ सिंधी जी

0: सर्विस बगैर जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: जय अम्मा सर जी, आरिफ सिंधु जी अपने गाने में शामिल किए हैं, धन्यवाद देते हैं। और सभी भाई और सभी बहन अपने अपने गाने में शामिल किए हैं, सभी को भी धन्यवाद देते हैं।
0: वेलकम किया। और इसी बात पर यहाँ पे आरिफ सिंधु जी लिखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया। साथ ही साथ रवि जी लिखते हैं कि आपकी याद आती है तो आंखें भर आती हैं, आपकी याद आती है तो आंखें भर आती हैं, आपकी कमी हर पल मुझे बहुत तड़पाती है, और कैसे कहें कि आपके बिना कैसे जी रहे हैं, कैसे कहें कि आपके बिना कैसे जी रहे हैं, ये उदास शामें अक्सर आपकी याद दिलाती है, स्पेशली किरण जी के लिए। ओके जी। और यहाँ पे प्रियंका जी लिखते हैं कि मस्त सॉन्ग है, आंखों से तूने ये क्या कर दिया, मजा आ गया सुन के। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि आंखों से तूने क्या कह दिया, ऑसम सॉन्ग है जी बिल्कुल। और मीना कुमारी जी लिखती हैं कि बहुत ही शानदार गाना चल रहा है। और एमडी फैज जी लिखते हैं कि जी हाँ, ये भी खूबसूरत नगमा है। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है। ओके। और कुंता बेनी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग है, थैंक यू सो मच आरिफ सिंधी जी। साथ ही साथ यहाँ पे प्रमोद कुमार लिखते हैं कि आरिफ सिंधी जी का डिमांड लाजवाब है। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि सुपर नगमे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये शेख मोहम्मद ताहिर जी लिखते हैं कि आज के सारे गाने दिल को छूने वाले हैं, और सभी दोस्तों की चॉइस बहुत लाजवाब है, थैंक यू सो मच। और दिगंबर जी क्या कहते हैं?
2: हेलो अमन सर जी, हम भी जुड़ चुके हैं आपके रेडियो हॉट स्टार शो में, थीम चॉइस में। इस पर थीम चॉइस तो किधर को भी अभी आता नहीं है मैंने कि हम देख नहीं पाते क्या आता ही नहीं है तो
0: अच्छा, मतलब कहने का मतलब कि आपके नंबर पे मैसेज नहीं जाता है, तो नंबर पे मैसेज आजकल नहीं जाता है आपको, या तो यानी कि चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा या ग्रुप में ज्वाइन करना पड़ेगा तभी आपको मैसेज मिलेंगे। अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ सुनीता गोप जी का, और आंखों से दिल में उतर के तू मेरे धड़कन में है। इंजॉय द ट्रैक।

0: करके तू मेरी धड़कन में है और दिगंबर जी क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
1: अमन सर जी एक बार थीम के नाम तो बता दीजिएगा।
0: ओके ओके ओके अभी बता देता हूँ। आज के जो थीम के शब्द हैं उनका नाम मैं एक बार फिर से बताता हूँ। आज के जो थीम के शब्द है वो है हुस्न, रूप, जिया, उसके बाद अदा, और ये पलकें और जुल्फे, चेहरा, आंखें, ख्वाब और सपना। ओके फिर से सुन लीजिए, हुस्न, रूप, जिया, अदा, पलकें, जुल्फे, चेहरा, आंखें, ख्वाब और सपना। उम्मीद करते हैं कि सुन लिए होंगे। और फीडबैक मेरे पास और भी आए हुए हैं, जैसे कि अनिल कश्यप जी लिखते हैं सुपर सॉन्ग है जी बिल्कुल, और यहाँ पे यानी कि प्रियंका जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार लाजवाब पसंद है, और यहाँ पे संध्या पटेल जी लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग के लिए थैंक यू सो मच, एक सभी गाने एक से बढ़कर एक चल रहे हैं। और सुनीता गोप जी लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी मेरा गाना सुनवा दिया आपने। और रवि जी लिखते हैं कि दिन बीत जाते हैं सुहानी यादें बनकर, लगता है बहुत गहरा चोट खाया भाई आपने। लिखते हैं कि दिन बीत जाते हैं सुहानी यादें बनकर और बातें रह जाती हैं कहानी बनकर, और पर दोस्ती तो हमेशा दिल के करीब रहते हैं। अच्छा यानी कि पर दोस्त तो हमेशा दिल के करीब रहते हैं और कभी मुस्कान तो कभी आंखों में पानी बनकर आए है। ये डेडिकेटेड है अजय भगत जी को, और यानी नाम है जॉय पर्वत जी एंड अमन जी, थैंक यू सो मच। साथ ही साथ यहाँ पे राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा नगमे के लिए धन्यवाद देते हैं, और कुंता बनी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच सुनीता गोप जी इतना प्यारा गाना सुनवा दिया आपने, और एम डी फैजी लिखते हैं कि जी बिल्कुल प्यारा गाना है धन्यवाद देते हैं, और नंदलाल जी जुड़ चुके हैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश से बहुत बहुत वेलकम है, लेकिन बहुत देर करती हुई चल आते आते गाना निकल गया है आपका, और आज आपके सॉन्ग विनर भी बने हुए हैं लेकिन आपको क्या पता है ही नहीं, ये फीडबैक।
2: आर जे अमन सर जी सुनीता गोप जी अपने गाने में शामिल किए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जी,
0: वेलकम जी। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि आंखों से दिल में उतर कर बहुत ही प्यारा गाना अच्छा लगा। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि तेरी धड़कन ही जिंदगी का किस्सा है मेरा, और तू जिंदगी का एक अहम हिस्सा है मेरा। अगला डिमांड जो मैं प्ले करने वाला हूँ वो यानी नाम है प्रियंका जी, और प्रियंका जी इंजॉय द ट्रैक, और ये स्पेशली डेडिकेट करना चाहती हैं अपने यानी प्रेम पुजारी जी को। ओ माई गॉड,

0: बिल्कुल आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया वो तुम ही हो ए सनम ए सनम ए सनम। और फीडबैक भी आया है, शामिल करते हैं।
1: अमन सर जी एक सॉन्ग सॉन्ग रिक्वेस्ट में डाल दिया है, दो दिन से नंबर तो नहीं आ रहा आज।
0: ओके, कोशिश करते हैं। और यहाँ पे एम्पलीफाई जी रिटर्न, वाह क्या बात है, एकदम बेहतरीन पसंद के लिए बहुत शुक्रिया। मजा के इस गाने को सुनकर और राधा कृष्ण गोपी के बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे डिमांड के लिए। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे अजय भगत जी का है, सुनना चाहते हैं। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है।

0: बिल्कुल, आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। और सर्वजीत सेठी जी लिखते हैं कि कार्यक्रम शानदार होता है। अच्छा, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे प्रमोद कुमार लिखते हैं सुपर सो सुपर डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और प्रियंका जी क्या कहती है सुन लेते हैं।
1: हेलो अमन सर, थैंक यू जो आपने मेरा गाना सुनाया। इसके लिए मैं अपने प्रेम पुजारी के लिए दो लाइन गाना चाहती हूँ।
0: गाइए गाइए, हम
1: जो कि इस तरीके से है। जिंदगी है तुझसे मेरा इश्क कहता है, तू मेरी सांसों में हर वक्त रहता है।
0: क्या बात है?
1: मेरा ख्वाब तू

0: सनम,
1: ऐ सनम,
0: क्या बात,
1: वो तुम ही हो ऐ सनम।
0: बहुत
1: थैंक यू वेरी मच।
0: ओके जी, और साथ ही साथ यहाँ पे सरोज भगत जी क्या कहते हैं भी सुन लेते हैं।
2: अरजय अमन सर जी, अजय भगत जी अपने गाने में शामिल किए हो, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू,
0: वेलकम जी आपका भी। और हमें अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि आंखें हैं या सीसीटीवी कैमरा। अरे आजकल आंखें सीसीटीवी कैमरा है ना, पूरा मतलब इमेजिनेशन में सब कुछ इम्पॉसिबल है। जो आप यानी कि सोचिएगा ना वही पॉसिबिलिटी है कि नहीं। आप एक बार इमेजिनेशन करके तो देखिए, जैसे कि मैं करता हूँ। और साथ साथ हमें समुंदर सिंह जी लिखते हैं कि गुड इवनिंग अमर सर जी, वेलकम है आपका भी। और ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं फैज जी।
3: अस्सलाम वालेकुम। आँख बंद करके कैसे देखा जाएगा
0: जी,
3: थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए भाई जान।
0: जी जी बता रहा हूँ,
3: बहुत मस्त लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।
0: आँख बंद करके कैसे देखते हैं, बिल्कुल आँखें बंद कीजिए और मन में उस उनका ख्याल रखें, इमेजिनेशन कीजिए वो यानी कि कैसी दिख रही हैं या क्या कर रही हैं। जो सोचेगा यानी मन की आंखों से देखेगा वो चीज़ें दिखाई देते हैं, बिल्कुल वो चेहरा वो आपके सामने आ जाएगा और आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पे शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि सुपर सुपर सुपर सॉन्ग है मोहब्बतें का गाना। और कुंता भी लिखते हैं कि ये डिमांड भी बहुत ही लाजवाब है। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। नंदलाल जी लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना बजाने के लिए। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बेहतरीन नगमा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ यहाँ पे कृष्ण बाजी लिखते हैं कि हम भी जुड़ गए हैं जी, वेलकम है। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे शाहिद अंसारी जी का है, और शाहिद अंसारी जी हमेशा आते हैं कुछ अलग गाने। एंजॉय द ट्रैक शाहिद अंसारी जी।

0: वेलकम बैक। सच में गाना बहुत प्यारा था, थैंक यू सो मच। और ये फीडबैक
1: आरजे अमन सर जी, शाहिद अंसारी जी अपने गाने में शामिल किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, थैंक यू।
0: वेलकम किया। और यहाँ पे अनिल कश्यप जी क्या कहते हैं, सुनते हैं।
2: अमन सर जी, कुल मिलाकर ये दो जुड़वा गाने बैक टू बैक आए हैं, एक आंखें खुली हो या हो बंद, और एक ये पलकें खुली हो या हो बंद, दीदार हो ही जाता है। तो मतलब मिला जुला के सेम बात ही है, और दोनों गाने सुपर हिट रहे, और बहुत बहुत धन्यवाद जो जो लोग इस तरह के गाने पसंद कर रहे हैं।
0: जी बिल्कुल, और अगला गाना भी सुनिए, वो भी अच्छा रहेगा। और यहाँ पे शेख मोहम्मद के ताहिर जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग है। जी बिल्कुल, वो तो है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि भाई शाहिद जी की पसंद मुझे सुपर हिट लगी है, धन्यवाद देते हैं। और शाहिद जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अमन सर जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया। दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। एसके जायसवाल जी लिखते हैं कि अमन जी मैं अभी नमाज पढ़ के आया हूँ और गीत बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे, यानी प्रमोद कुमार जी का, प्रमोद जी इंजॉय करते हैं।

बिल्कुल उठती नहीं है यूं ही। इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो है इन मीना जी की, इन मीना कुमारी जी की। मीना कुमारी जी, एंजॉय द ट्रैक, भोजपुरी ट्रैक है।

0: वेलकम बैक। और यहाँ पे इनके प्रमोद कुमार लिखते हैं, थैंक यू सो मच जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। साथ ही साथ राधा किशन लिखते हैं, धन्यवाद इतना खूबसूरत गाना सुनाने के लिए। और ये फीडबैक से लेते हैं
1: अजय अमन सर जी, प्रमोद कुमार जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और यहाँ संध्या पटेल जी लिखते हैं, बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही वेरी नाइस सॉन्ग। MD5 जी लिखते हैं जी बिल्कुल, बहुत ही प्यारा गाना, भोजपुरी गाना सुनने को मिला, मजा आ गया है सच में। रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बनाते मजा आ गया है। मंगेश देशमुख जी सुन रहे हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड प्ले करने वाला हूँ मैं, वो प्ले करने वाला हूँ मीना इब्राहिम जी का यूएसए। एंजॉय द ट्रैक।

बिल्कुल जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था तूने मुझे वो प्यार दिया। वाह क्या गाना है। मीना जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। और यहाँ पे शिल्पा बहन लिखते हैं कि तू हाँ तू है ये वाला गाना सुपर डुपर हिट लगा है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड है जी बिल्कुल। और आत्माराम पाटिल जी जुड़े हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और संध्या पटेल जी लिखते हैं इस गाने की जितनी तारीफ करें कम है, ऑसम। और आपने गुनगुनाया वो भी अच्छा लगा, वो थैंक यू सो मच। अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि दिल जीतने वाला गाना है, जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था जी बिल्कुल। और एमडी फैज लिखते हैं जी एकदम झक्कास गाना है। हाँ जी झक्कास पे मुझे याद आ रहा है झक्कास जी का गाना प्ले करना अगला। और यहाँ पे यानी कि पीयूष कुमार मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है। लिखते हैं कि पहला ही गाना धमाकेदार लगा है। और शेख मोहम्मद ताहिर जी लिखते हैं कि जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था मेरा फेवरेट गाना है। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे काजल झक्कास जी का है और सुनना चाहती हैं वो कौन है जो सपनों में आया। ओके जी एंजॉय द ट्रैक और स्पेशली डेडिकेट मिठू मियां जी को है।

0: वेलकम बैक और बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं मेरे पास। और एमडी फ्रेंचाइजी ने जी काजल जी आपकी पसंद सुपर से ऊपर झकास लगी, मजा आ गया सुनकर, धन्यवाद देते हैं। और सरव जी सेठी लिखते हैं कि सभी गाने जबरदस्त चल रहे हैं। और कुंता बेनी जी लिखते हैं कि अमन सर जी प्रोग्राम बहुत ही शानदार, और काजल झक्का जी का गाना बहुत ही दिल से धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और अनिल मेहता जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: वाह, बहुत ही लाजवाब गाने की चॉइस पसंद चल रही है, एक से एक बढ़कर गाने चल रहे हैं। मैं भी जुड़ गया हूँ बहुत दिनों के बाद आरजे अमन सर आपके लाइव शो में, और हमने भी फरमाइश

ज्योति खटवाड़े जी का प्ले करना चाहता हूँ। याद में गाना सुनना चाहती है जो उनके बेटों को बहुत ज्यादा पसंद है। इंजॉय द ट्रैक ज्योति खटवाड़े जी।

वेलकम बैक। और यहाँ पे दत्ता जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं दत्ता करण जी। और हमारे असलम राधा जी लिखते हैं कि काजल झक्का जी का झक्का गाना सुनाने के लिए धन्यवाद देते हैं। और जी जी बिल्कुल मुझे याद है, आप कभी बहुत जल्दी आने वाला है। नंदलाल जी लिखते हैं कि कौन है जो सपनों में आया, लाजवाब गाना सुनवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अभिषेक तिवारी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और आत्माराम जी लिखते हैं ज्योति खंडवाली जी के पसंद, वंडरफुल। और संध्या जी लिखती हैं कि बहुत ही नाइस सॉन्ग है जी, बिल्कुल। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि आज के सभी गाने अच्छा मतलब आज के गाने और पहले वाले गाने, ये कौन है जो सपनों में आया, दोनों सुनने के मिलकर मजा आ गया है। और मीना जी लिखते हैं थैंक यू सो मच, मेरा गाना, हाँ अभी तो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ, इस गाने के बाद अभी मैं प्ले करने वाला हूँ अपना गाना। और एम डी फैज जी लिखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने के लिए। और यहाँ पे यानी प्रियंका जी लिखती है कि शानदार गाना है, थैंक यू सो मच। एंड कुंता जी लिखते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, बहुत ही खूबसूरत डिमांड, थैंक यू सो मच। ज्योति खटवड़ी जी, अजय कुछ जी लिखते हैं कि मेरा सॉन्ग आपके पास नहीं आया, आपका कोई गाना नहीं आया मेरे पास, आपने कब भेजा है, कहाँ भेजा है, नहीं आया है, ओके। और एस कलम जी लिखते हैं कि वो थोड़ी उलझन हुई थी, ओके कोई बात नहीं, चलिए आप आई बाहर आई, अगला गाना एंजॉय कीजिए। ये है मीना कुमारी जी का डिमांड।

0: Yes, understand. क्या हो जाए?
1: रॉन्ग नंबर बा।
0: हेलो हेलो
1: ना मनवा।
0: ना

0: करो सुन लो हो चिरई
1: ना मनवा
0: ना सुन लो हो करे जा
1: आप तो फोन रखा
0: फोन हम ना रखा हम तो बतिया के रहा
1: पगला गई ना का
2: अरे हम तो पगला गई भाई।
3: वेलकम बैक है और बहुत सारे फीडबैक भी आ चुके हैं मेरे पास यहाँ पे। दिगंबर जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
4: अमन सर जी हमारे भी सॉन्ग को ले लीजिए।
3: ओ माय गॉड ऐसा मत कहा कीजिए प्लीज। आप कहिएगा तो मुझे मतलब क्या बोलते हैं वो अंदर से अजीब सी आवाज आने लगती है, ऐसा मत कहिए प्लीज। दत्ता जी लिखते हैं कि मीना जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड है। साथ ही साथ यहाँ पे यहाँ संध्या पटेल जी लिखते हैं वाह वाह वाह रेडियो हॉट स्टार में नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा है। जी बिल्कुल कभी कभी डिस्टर्ब कर रहा है, इसके लिए हम सॉरी, मेरी मतलब मेरी गलती नहीं है, ये मेरे हाथ में है भी नहीं। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि बहुत ही अच्छा गाना लगा है। और आनंद इन मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं, बहुत बहुत वेलकम है सर जी आपका। और एमडी फैजी से वाह एकदम मज़ेदार गाना सुनने को मिला, मज़ा आ गया सुन के। और अमीना जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। एस खान जी लिखते हैं कि हाँ बिल्कुल बात मत कीजिएगा वैसे ब्यूटीफुल संग है जी, बिल्कुल बहुत अच्छा गाना है। और जुड़ चुके हैं यहाँ पे सुरेंद्र पाल जी, बहुत बहुत वेलकम है, लिखते हैं कि कौन है जो सपनों में आया गाना अच्छा लगा है। रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि ये भोजपुरी गाना बहुत अच्छा लगा है। और कुंता बने लिखते हैं कि ये सुपर लाजवाब सॉन्ग। इसी बात को असलम राणा जी का डिमांड में प्ले कर रहा हूँ। असलम राणा जी एंजॉय द ट्रैक।

0: और मैं एक एक चीज के लिए मैं सॉरी कहना चाहूंगा, यहाँ पे यानी जो दीक्षा जी का गाना था वो मुझे गलती से यानी कैंसिल हो गया है, आई एम सॉरी। उसके लिए आप दोबारा भेज सकती हैं, यानी कि दीक्षा जी आपका गाना मुझसे गलती से यानी कि कैंसिल हो गया है, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और गलती से हुआ है, मैंने जानबूझ के नहीं किया है और अनजाने में गलती हो गई है। मैं किसी और गाने को रिजेक्ट कर रहा था और वो उसमें से आप ही पर क्लिक हो गया है। ओके, और यहाँ पे अनिल मेहता जी लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग है और मजा आ गया सुन के, और साथ साथ ये क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: मीना जी का गाना बहुत लाजवाब लगा अमन सर जी, और उनसे बोलिए कि लोन पे घर मत बनवाइए, अपना जो झोपड़ी है वही काम आएगा, लोन में फिर दूना तीना देना पड़ जाएगा, बाद में फिर बाप पछताइएगा। हाँ, ये बात को जरा ध्यान रखिए।
0: तो घर हमें तो बनवाना है।
1: पसंद करने के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी जी, धन्यवाद देते हैं आपको भी। साथ ही साथ यहाँ पे रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि ये गाना बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
2: और जय अमन शाह जी, एमडी असलम राणा जी अपने गाने में शामिल किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सभी भाई और सभी बहन अपने अपने गाने में शामिल किए हैं, सभी को भी धन्यवाद देते हैं।
0: ओके, वेलकम है आपका भी। और एमडी फाजिल लिखते हैं वाह बहुत ही शानदार पसंद है, थैंक यू सो मच। और यहाँ संध्या पटेल लिखते हैं कि नाइस ये चॉइस है। और रवि मार लिखते हैं कि सुना गाना सुनने को मिला, मजा आ गया है। और मीना कुमारी लिखते हैं कि दो दो शहर है, अच्छा लिखते हैं कि तू रूठी भी नहीं और मनाया भी नहीं, हमारी मोहब्बत बस खामोशी में दफन हो गई। और किसी को तो खो देना आसान नहीं होता, और खासतौर पर वो जिसे तुम खुद से ज़्यादा चाहते हो, और तेरा नाम लेने का भी अब हक नहीं रहा। और पर क्या करूँ, दिल है कि तेरी ये यादों के आगे झुक जाता है, और तूने मेरी खामोशियों को कभी समझा नहीं, और मैं तेरे वादों के आगे आज भी भूल नहीं पाई हूँ। अच्छा, ओके। और यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं आदरणीय अमन सर जी को प्यार नमस्कार, वेलकम है आपका भी। और मीना जी लिखते हैं कि मीना इब्राहिम जी कि मेरा रिक्वेस्ट को प्ले करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी बात पर जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो है यानी सिया जी का, और सिया जी इंजॉय।

वेलकम बैक फीडबैक भी मेरे पास है। असलम खान लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। काजल जी लिखते हैं थैंक यू सो मच, आपने मेरा गाना भी बजा दिया है। और रवि जी लिखते हैं कि ये दीवानगी की कोई हद नहीं होती, लिखते हैं कि दीवानगी की कोई हद नहीं होती और इश्क की कोई सरदर्द नहीं होती है। और मुस्कुरा के कहना है जो कह दो, और मुस्कुरा के जो कहना है वो कह दो, हर बात में नफरत की वजह नहीं होती है। इसी बात अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो हुकुमचंद जांगिर जी के है, हुस्न की वादियों से। सच में ये गाना बहुत ही प्यारा है। हुस्न की वादियों में इश्क पलता रहे। Enjoy the track, हुकुमचंद जांगिर जी।

सन मुझे बहुत अच्छी लगी, वारिस फिल्म का शानदार गाना, मजा आ गया सुन के। और संजय पटेल जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, मजा आ गया इस गाने को सुनकर। और शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि हुस्न की वादियों में बहुत ही प्यारा गाना है। साथ ही साथ यहाँ पे कुंता बेन लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और MD5 जी लिखते हैं कि एकदम बेहतरीन डिमांड के लिए मजा आ गया, धन्यवाद देते हैं भाई को। रवि महाराज जी लिखते हैं कि सभी गाने सुपर सुपर सुपर चल रहे हैं, हुस्न की वादियों में भी गाना अच्छा लगा। इस खानम जी लिखते हैं कि बेहतरीन सॉन्ग है जी, बिल्कुल। और यार बबीता जी लिखते हैं कि नमस्ते मनसा जी, ओके। और अमीना खान जी लिखते हैं कि वह क्या जबरदस्त माहौल बनाया आपने, मजा आ गया सुपर सॉन्ग के लिए। इसी बात पर अगला डिमांड में दो दोस्तों की पसंद का है, एक तो है यानी कि उनका नाम है शिल्पा बेन जी है, और शिल्पा बेन जी के साथ साथ एक साहब और भी है जैसा देखता हूँ मैं उनका नाम। यहाँ पे शिल्पा बेन जी के साथ साथ कौन है, एक साहब और, हाँ अशोक पाल जी और शिल्पा बेन जी, आप दोनों की पसंद एक ही है और वो है आंखियों के झरोखे से, ये वाला गाना। Enjoy the track.

0: वेलकम बैक। और यहाँ पे शिल्पा बहन लिखते हैं बहुत बहुत थैंक यू सो मच अमन जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है। और संध्या पटेल लिखते हैं अमेजिंग ओल्ड इज गोल्ड सॉन्ग के लिए थैंक यू सो मच। और रणवीर सिंह जेठालाल जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो मच। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं,
1: अर्जय अमन सर जी, शिल्पा जी और अशोक पाल जी दोनों का मिली जुली फरमाइश गाना सुनाने के लिए लाख लाख धन्यवाद, थैंक यू।
0: वेलकम जी आपका भी। और कुंता बहन लिखते हैं कि दोनों की मिली जुली फरमाइश बहुत अच्छी लगी है। और अनिल मेहता लिखते हैं कि आंखियों के झरोखे से गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और गोविंदा खंडाते जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और ये फिल्म है,
2: हेलो
0: हेलो
2: अमन सर
0: जी बोलिए।
2: आपने जो अखियों के झरोके से जो सॉन्ग सुनाया है वो बहुत ही खूबसूरत है
0: जी, बिल्कुल।
2: इसके लिए मैं आपको दो लाइन सुनाना
0: चाहती हूँ। सुना दीजिए प्लीज
2: जी।

0: बिल्कुल अकेले तन्हा जिया ना जाए तेरे बिन। वैसे फीडबैक भी आए हुए हैं और शेख मोहम्मद ताहिर जी लिखते हैं कि हवाओं में तैरती एक मीठी सी आवाज दिल को छू जाती है जिसकी हर एक बात। रेडियो हॉटस्टार का यह है प्यारा सा अंदाज हर लम्हे को बना देता है बेहद खास। आरजे अमन सर आपका हर एक शब्द कमाल, आपकी बातें आपकी मुस्कान बेमिसाल। जब भी आप माइक संभालते हैं प्यार से तो श्रोताओं के दिल खिल उठते हैं बाहर से बाहर। थैंक यू सो मच। साथ ही साथ यहाँ पे ये एस खानम जी लिखते हैं वाह वेरी हार्ट टचिंग सॉन्ग है जी। और यहाँ पे रणवीर सिंह जेठालाल जी लिखते हैं कि जिया ना जाए तेरे बिन गाना अच्छा लगा है मुझे। अमरीफ फैज जी लिखते हैं वाह एकदम खूबसूरत गाने के लिए धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ ये फीडबैक
1: अमन सर अकेले तन्हा कहाँ जिया जाता है। और ये तो मुझे हाल ही में ऐसा एहसास भी हुआ है क्योंकि जब मेरा मोबाइल खराब था तो आप लोग से तो दूर ही था ना मैं।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ आपकी इस तकलीफ को। अजय भगत जी लिखते हैं कार के रवि जी की पसंद मुझे बहुत लाजवाब लगी है। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि मैं तबाह हूँ तेरे इश्क में और तुझे दूसरों का ख्याल है और कुछ मेरे मसलों पर भी गौर कर मेरी तो पूरी जिंदगी का सवाल है। आए है क्या बात बहुत प्यारा है ये फीडबैक।
2: हेलो आदरणीय अमन सर जी नमस्कार, नमस्कार। मैं बीरबल बघेल भितरवार ग्वालियर मध्य प्रदेश से जुड़ गया हूँ आपके साथ और बहुत दिनों के बाद रूबरू आज रेडियो हॉट स्टार पर हो रहा हूँ। तो मैं सर्वप्रथम आदरणीय अमन सर जी आपको, आदरणीय वंशिका जी को, आदरणीय परमार सर जी को और आदरणीय आरजे जो नए मेहमान आकांक्षा जी को और इस वक्त प्रोग्राम को सुन रहे समस्त श्रोता भाई बहनों को बीरबल बघेल का सादर प्रणाम नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: इस वक्त का प्रोग्राम बहुत ही शानदार चल रहा है, बहुत ही खूबसूरत।
0: धन्यवाद
2: आपका
0: इसी बात पर।
2: बीरबल बघेल बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अगला डिमांड सुनिए एमडी फैज आलम जी का और ये गाना तो भाई सुनने के बाद ही पता चला है कि भाई कैसा गाना है। क्योंकि हुस्न पर गुमान न कर भाई, हुस्न पर सबको गुमान होता है ना।

0: बिल्कुल गुमान मत कर भाई। और वैसे फीडबैक भी आया हुआ है यहाँ पे, बिरबल बगैर लिखते हैं शानदार सॉन्ग है जी बिल्कुल। और अनिल मेहता जी क्या कहते हैं?
1: आरजी अमन सर, मुझे ये जानना है कि रात 10 बजे जो हर रोज प्रोग्राम अब प्ले हो रहा है, मैं उसमें आज पहली बार मैं जुड़ने वाला हूँ, तो आरजे भी आरजे का नाम भी नहीं पता है, लेकिन कौन सा प्रोग्राम कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा जानना था। ओके थैंक
0: जी। मैं आपको बता दूं कि आरजे का नाम है आरजे आकांक्षा जी, और समझिए कि उनके आप प्रोग्राम को सुनने के बाद मुझे भी भूल जाएंगे, क्योंकि वह बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं। और दूसरी बात के यहाँ पे 9:30 बजे से आप सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से अपनी डिमांड भेज सकते हैं उनके पास, और चैट बॉक्स में एक्टिव रह सकते हैं। जो आपको चैट बॉक्स कहाँ मिलेगा मैं बता देता हूँ, चैट बॉक्स रेडियो हॉटस्टार के एप्लीकेशन को अपडेट कीजिए, अपडेट करने के बाद इन मोर में जाकर आपको मिलेगा चैट रूम, यानी कि चैट बॉक्स मिलेगा, और वहाँ पे दोस्तों से दिल खोलकर बातें कर सकते हैं, और वहाँ पे इन मजे कर सकते हैं। आपका कोई नंबर भी शेयर नहीं कर सकता है, मतलब कोई नंबर आपको दिखेगा नहीं, बस आप बातें कर सकते हैं और बस इंजॉय कीजिए। और यहाँ MD5 जी लिखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया मेरा गाना प्ले करने के लिए, और दाता जी लिखते हैं बीरबल बघेल जी का की बातें मुझे अच्छी लगती हैं, उनका फीडबैक अच्छा लगा। रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि ये गाना मुझे अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और गजानंद जी लिखते हैं कि MD5 जानंद जी का पसंद मुझे बहुत पसंद आई है, धन्यवाद। और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
2: अमन सर जी, सॉन्ग रिक्वेस्ट में भी सॉन्ग नहीं, मैसेज नहीं ले रहे हो आप, कैसे?
0: देखिए सबसे पहली बात यह है कि जो लोग इन पहले के भेजे हुए हैं हम उनको देखेंगे, जो लोग इन बाद से भेजे मुझे सबको देखना पड़ता है ना, लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ, आप मेरे जगह पे होकर देखिए तब समझ में आपको आएगा। ओके प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग, और हर किसी की पसंद को पूरा करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यहाँ अब माने कि यहाँ पे 100 सॉन्ग रिक्वेस्ट में आए हुए हैं और बाकी हमारे यानी मैसेज में आए हुए हैं, कहाँ से मैं सबकी यानी डिमांड को पूरा कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं वहाँ पे। फिलहाल अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ ओ यानी संध्या पटेल जी का है, और संध्या पटेल जी एंजॉय द ट्रैक, तेरे हुस्न का जादू चल गया।

0: चल गया।
1: बिल्कुल तेरे हुस्न का जादू चल गया और एमडी फैजी देवा एकदम मस्त गाना सुनने को मिल गया, मजा आ गया है। और यानी कि प्रमोद कुमार लिखते हैं कि तेरे हुस्न का जादू चल गया, गाना लाजवाब लगा है। और रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। दत्ता जी लिखते हैं कि संजय पटेल जी गाना सुपर हिट है। और हाँ, यानी कि कल के स्टार ऑफ द वीक कौन कौन है, अच्छा सवाल है आपका, अभी बताता हूँ मैं आपको। और कल के स्टार ऑफ द वीक के बारे में हमारे जाकिर जी का ओपन करना पड़ेगा, जाकिर मुलानी। हाँ, ये यानी कल के स्टार ऑफ द वीक है वह है विवेक मुशरान, आदित्य पंचोली, मुकुल देव, सुमित सहगल और जुगल हंसराज। एक बार फिर से नाम बताता हूँ, विवेक मुशरान, आदित्य पंचोली, मुकुल देव और सुमित सहगल, जुगल हंसराज, ये यानी पांच कल के एक्टर्स रहेंगे। इनके गाने अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, भले ही यानी कि फिल्में कम हैं लेकिन गाने बहुत अच्छे अच्छे हैं। ओके, थैंक यू सो मच, आपने अच्छा सवाल किया है। और दिगंबर जी, मैं आपका फीडबैक नहीं शामिल करूंगा क्योंकि आप उल्टा पुल्टा कहते हैं कि मेरा गाना नहीं प्ले हुआ, ये वो, प्लीज़ ऐसा मत आप बोला कीजिए, अच्छा नहीं लगता है सुनने में। मीना जी लिखते हैं ऑसम सॉन्ग है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अनिल मेहता जी लिखते हैं वाह बहुत ही लाजवाब गाना है ये भी। और गजानंद जी लिखते हैं कि तेरे हुस्न का जादू चल गया। इसी बात पर अगला जो डिमांड है और आमना खान जी का, आमना खान जी क्या सुनना चाहती हैं, इश्क का राजा, इंजॉय द ट्रैक।
2: इश्क का राजा ए डी डी वाई, हुस्न की रानी, इश्क का राजा ए डी डी वाई, हुस्न की रानी।

बस जबरदस्त गाना, मजा आ गया सुन के। और यहाँ पे पूजा भास्कर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और विभूति भूषण शरण जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और गजानंद जी लिखते हैं कि आमना खान जी का पसंद मुझे अच्छी लगी, इसी बात पर अभिषेक तिवारी जी का एंजॉय द ट्रैक।

बिल्कुल मैं खाना जाने छोड़ देंगे। और यहाँ पे मीना जी लिखते हैं कि आमना खान जी का गाना मुझे बहुत पसंद है, मैंने पहली बार सुना है। आमना खान जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए, और दोस्तों का भी शुक्रिया। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि गजब का गाना है, मजा आ गया सुन के। और विभूति भूषण शरण जी लिखते हैं कि लाजवाब चॉइस है। गजानंद जी लिखते हैं कि अभिषेक तिवारी जी की पसंद और आमना खान जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई है। और रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि गाना मुझे अच्छा लगा, इसी बात पर अगला डिमांड जो अच्छा। यहाँ अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि मैखाने वाला गाना मुझे अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड दिगंबर जी का, एंजॉय द ट्रैक।

बिल्कुल हुस्न वालों से अल्लाह बचाए, कोई बेमौत मारा ना जाए। और संध्या पर दिल जीते वाओ, ये भी गाना जितनी भी तारीफ की जाए कम है हुस्न वाले वाला। और अकुंता बने लिखते हैं कि सभी के गाने बहुत ही शानदार चल रहे हैं, सभी के डिमांड बहुत ही प्यारे हैं। रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि हुस्न वालों से ये दिल बचाए गाना मुझे अच्छा लगा है। और आमना खान जी लिखते हैं वाह ये गाना भी बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। इसी बात पर जो डिमांड है MD अरशद जी का है, अरशद जी सुनना चाहते हैं हुस्न है सुहाना इश्क है दीवाना, एंजॉय द ट्रैक।

0: बिल्कुल थोड़ा थोड़ा गाना प्ले करो, इसके लिए हम सॉरी, चूंकि अब क्या ही कह सकते हैं। यहाँ पे दिगंबर जी लिखते हैं, सॉरी गजानंद जी लिखते हैं कि दिगंबर जी गाना मुझे अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि ये गाना हुस्न है सुहाना, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और विभूति भूषण शरण जी लिखते हैं कि जब से रेडियो गाना सुनने लगा हूँ, और यानी कि समय का तो पता ही नहीं चलता है कि कब 11 बज जाते हैं। अच्छा, और शेख मोहम्मद ताहिर जी लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। और अर्षद जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा भी गाना प्ले करने के लिए। और साथ ही साथ जी बिल्कुल सही कहा आपने। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि सोचा था कि आज फिर ये 13 सिवा कुछ और सोचूं, और जब तक मैं सोचूं और क्या सोचूं। सच में अगला जो डिमांड है हमारे, ये सुनील कुमार बांका बिहार से सुनना चाहते हैं, नागन स्वरूप है तेरा, और ये गाना ना प्ले हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एंजॉय द ट्रैक।
1: डोर समझ रहा है नादान, मौत आई है तेरी।
0: ओके
2: मौत, इतनी हसीन, अरे ये नागन डसले तो क्या कहना।

0: बिल्कुल ले जाऊंगा तुझको, दुनिया देखते रह जाएगी। रणवीर सिंह जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद नागन सर रुपये तेरा। और संजय पटेल लिखते हैं कि इस गाने की लाइन बहुत ही प्यारी है। और ये फिर
1: आरजे अमन सर जी, सुनील कुमार जी अपने गाने में शामिल किए हैं, धन्यवाद देते हैं। और सभी आदमी अपने अपने गाने में शामिल किए हैं, सभी को भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर,
0: वेलकम किया। और ये फीडबैक सुन लेते हैं काजल झका जी का।
2: सभी दोस्तों का गाना बहुत अच्छे अच्छे काफ़ी अच्छे, सभी दोस्तों का गाना। थैंक यू सभी दोस्तों को, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। कितना अच्छा प्रोग्राम चंगाने के लिए। मैं काजल सीतामढ़ी बिहार से।
0: अरे काजल झका जी, ऐसा लग रहा है कि आपकी तबीयत बहुत नासाज है, लग रहा है कि आपकी तबीयत बहुत खराब हुई है, ऐसे क्या हुआ है जरूर बताइएगा। फिलहाल अगला जो डिमांड प्ले करने वाला हूँ हमारे सरबजीत शेट्टी जी का, एंजॉय द ट्रैक।

बिल्कुल। और यहाँ पे MD5 जी लिखते हैं, जी बिल्कुल बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत अच्छा लगा है। और संध्या पटेल जी लिखते कि अमेजिंग सॉन्ग, एक से बढ़कर एक है। रणवीर सिंह जेठालाल जी लिखते कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और

और यहाँ पे विभूति भूषण शरण जी लिखते हैं कि लाजवाब गाना, मजा आ गया। रिक्वेस्ट करने वाले दोस्त को बहुत बहुत शुक्रिया। और अशिल्पा बेन जी लिखते हैं कि रश्मि पाजेब का गाना बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद। और कुंता बेन लिखते हैं दोनों डिमांड लाजवाब लगे। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो है हमारे यानी कि बबीता जी का। बबीता जी क्या कहती है? बबीता जी सुनना चाहती है पी पी पी पी पिया, इंजॉय द ट्रिप।

0: बिल्कुल पिया। और यहाँ पे संध्या पंडित जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग, सुपर डुपर हिट है। दाता जी लिखते हैं बबीता जी गाना मुझे बहुत ही सुपर हिट लगा है। और MD5 जी लिखते हैं कि जी बबीता जी का डिमांड जबरदस्त है, थैंक यू सो मच, मजा आ गया सुन के। और सरभजीत सेठी जी क्या कहते हैं?
1: धन्यवाद अमन सर जी, आपने मेरा गीत चलाया और जिन्होंने मेरे गाने पर फीडबैक दिए उनका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सभी गीत एक से बढ़कर एक चल रहे हैं, तो सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार जो सबको दीवाना बना दे। मैं सरबजीत सेठी फाजिलका पंजाब से,
0: धन्यवाद आपका भी। और यहाँ पे आमना खान लिखते हैं कि बबीता जी की चॉइस जबरदस्त, बहुत दिनों बाद सुनने को मिला ये गाना। और राम रणवीर सिंह जेठालाल जी लिखते हैं गाना भी बहुत अच्छा लगा। इसी बात का अगला जो डिमांड है अनिल कश्यप जी का है, सुनना चाहते हैं चेहरा तेरा किताबी किताबी।

0: वेलकम बैक। फीडबैक भी मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं और मेरे पास समय कम है, और चूंकि इस समय समय हो चुका है 9:14:36। ओके, यहाँ पे कुत्ता बनी जी लिखते हैं कि शानदार डिमांड है बबीता जी की, मजा आगे सुन के, और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: अमन भैया नमस्कार, आपने मेरी पसंद का गाना प्ले किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दोस्तों का फीडबैक देने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। मैं सुनील कुमार बांका बिहार से।
0: ओके जी, और यहाँ पे संजय पटेल जी लिखते हैं कि लवली चॉइस है, मजा आगे सुन के, और रणवीर सिंह जेठरा लिखते हैं कि ये चेहरा तेरा किताबी किताबी अच्छा लगा गाना सुनकर। फैज लिखते हैं वाह एकदम जबरदस्त गाने के लिए धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो यह है संदीप सुतार जी का। संदीप सुतार जी

और आज के यहाँ पे विनर में हो रही हैं यानी कि संजय पटेल जी, बहुत बहुत आपका वेलकम है और बधाई भी है। और बताइए आपको मैं मतलब मैं फोन कर सकता हूँ ना, जल्दी से मुझे मैसेज कीजिए।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत आपका वेलकम है, आज के विनर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई भी है। और कैसे हैं आप?
0: थैंक यू भैया, मैं ठीक हूँ, और आप कैसे
1: हैं? अरे एकदम हम झकास बिंदास, फर्स्ट क्लास, मजे में, चकाचक गारंटी के साथ एकदम।
0: भैया बहुत मस्त प्रोग्राम चल रहा है, एक से एक गाने चल रहे हैं।
1: थैंक यू सो मच, आप तो आज लगातार एकदम फीडबैक पे फीडबैक दिए जा रही है हर गाने पर।
0: जी भैया बहुत मजा आ रहा है ना, एक से एक गाने चल रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, और आज क्या सुनना पसंद करेंगे बताइए?
0: मेरे को लता मंगेशकर की आवाज में सुना दीजिए, बाबुल प्यारे।
1: बाबुल प्यारे,
0: हाँ।
1: हमेशा सैड गाना क्यों लेके आती है?
0: नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस अच्छे लगते हैं।
1: हमको लगता है जरूर कुछ बात है।
0: नहीं नहीं नहीं भैया, ऐसी
1: कोई बात नहीं, गाना प्ले कर दिया।

0: वेलकम बैक। और यहाँ पे बीरबल बाकी लिखते हैं सुपर डिमांड, मजा आ रहा है सुन के। और मैं बता दूं कि रात के 10 बजे आरजे आकांक्षा जी का प्रोग्राम सुनना ना भूलें। और विभूति जी लिखते हैं कि गाना बहुत ही मज़ेदार है, अच्छा। और ये सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
1: थैंक यू अमन भैया गाना मेरा प्ले करने के लिए, और जितने लोगों ने चेहरा तेरा किताबी के लिए फीडबैक दिया उन सभी को मेरा प्रणाम है।
0: ओके जी, धन्यवाद है आपका भी। और एमडी फैजी लिखते हैं कि एकदम लाजवाब गाना भी है। और मीना जी लिखते हैं कि वाह बहुत ही शानदार गाना, इस गाने के लिए जितनी तारीफ करें बहुत बहुत शुक्रिया है, क्योंकि इस गाने से बहुत सारी मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच। और गजानंद जी लिखते हैं कि एक आंख मारूं तो वाला गाना भी मुझे अच्छा लगा है। और रणवीर सिंह जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और कुंता बेनी जी लिखते हैं कि हार्ट टचिंग सॉन्ग। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो यानी दीक्षा जी की है, और दीक्षा जी इंजॉय कीजिए अपने गाने को।

कमबैक और आखिरी गाना मैं प्ले करके जाऊंगा अजय कुजी का। और शिल्पा बेंजी लिखते हैं कि बाबुल प्यारे वाला गाना मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच। और बीरबल बघेल लिखते हैं कि सुपर फरमाइश है। और मैं बता दूं आर्जा कांछा जी के लिए अब लाइनें ओपन कर दी गई हैं, आप अपना डिमांड वहां पे कर सकते हैं। दत्ता जी लिखते हैं कि गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू दीक्षा जी। और गजानंद जी लिखते हैं कि आपकी पसंद का गीत भी लाजवाब लगा है। और रणवीर सिंह जी लिखते हैं कि ये चेहरा है चांद खिला गाना मुझे अच्छा लगा है। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि आपकी वॉइस तो चार चांद लगा देती है, थैंक यू सो मच। और रवि महाराज जी लिखते हैं कि चेहरा है या चांद खिला जुल्फ घने। आखिरी गाना मैं सुनवा रहा हूँ अजय कुजी की डिमांड पर, एंजॉय द ट्रैक। और इसी गाने के साथ मुझे दीजिए प्रोग्राम से निकलने की इजाजत, मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय।

0: ख्यालों में जय हंगामा, कहां भाग रही तू मैं?
1: या अल्लाह,
0: काले से डर गए क्या?
2: हमें काले हैं।

Allah!

0: त्रिपो।
1: क्या है चितचोर?
0: वन टू थ्री फोर।
1: क्या है चितचोर?
0: यू सिंग लाइक किशोर बट शादी का डेट।
1: ओ यस सितंबर 8।
0: वेरी लेट
1: डार्लिंग।

0: सच है बिल्कुल।
1: तू है बुलबुल।
0: सच है बिल्कुल। यू आर वंडरफुल।
1: लग जा गले ए, लग जा गले, दुनिया चले छम छम छम छम छम छम। एक गर्ल हम तुम पे दिल निसार करता है, रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: ये कमबख्त याद ही तो तबाह कर देती है डॉक्टर साहब। उस गली से गुजर हुआ नहीं कि पलटना मुश्किल हो जाता।
1: फिर तो जरूर कोई ऐसी याद होगी जिसका वास्ता आपके दिल से होगा।

लौट आए

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।